0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
1: Coming up next,
5: the Rush Hour with ABD.
6: City FM 89.
3: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
7: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
8: City FM 89.
9: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwaye aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa dalein.
10: Is awaaz ne cheen liya hai sukoon. तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
11: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो.
12: हटो पीछे, भागो.
11: अहमद, हटो वहां से.
13: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
3: City FM 89
1: on the dial.
14: Mornings evolve and so do we.
1: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
15: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on the breakfast show.
14: The freshest music, the hottest gossip,
1: and the energy Gen Z lives on.
14: It's bold, it's current, it's your morning routine.
1: The breakfast show.
14: Only on City FM 89.
16: City FM 89.
17: We

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
1: City FM 89,
3: योर ड्राइव अलोंग कंपेनियन.
1: यू आर लिसनिंग टू
0: फ्यूचर साउंड्स.
3: Future Sounds.
0: Discover fire new tracks, fresh drops, and the artists you need on your